0: तू गाती?
1: मेरी फैमिली में चाहे किसी का भी बर्थडे हो, मुझे तो गाना गाना ही पड़ता है। बहुत सारे गाने आते हैं मुझे।
0: मैं कनाडा भाग गया सिंगर बन।
2: रात बराती कंधा कोठे टप टप के जाना, तू सोखा समझे लगिया धोन निभाना।
0: तेरी बात।

0: Nada?
1: Nice. Sweet. Sister type. थोड़ा गरम गा सकती है?
2: देख, मैं बताऊं।

Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.